0: काटा सजन जाए लेकर जिया नैन सुई लगे तो निकले पिया हाय रे बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे हाय रे पिया हरे हरे
1: माजी 8.1 बेटर म्यूजिक हॉट एफएम